0: तेरी कोवाची का कान, अटी कुत्ती नेत्रो का कान, अतम से कोयो वाची तरे इनाजी का कान, बच्ची का कान, अतु तो अजे ना तुली नन को चिनी को का कान।
1: दारा
0: Papa,
1: buatan si Sandor yang pun udah tertangis. Senajan yang kang rokok penjenengan tangisi buatan kendel, nanging buatan batik kesang mali awet isti wangin pun den.
0: Pasti ngono kok cik papa, kok aku kalau iki bagi apa?
1: Ya.
0: Adikku di Trinetro opo kakak lereo disik yai tak atur